0: टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिका सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा, पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.
0: Number 10.

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए, उस पे गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी, रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया, तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 ईयर्स, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है, एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट व्हिच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग, वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया, यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती है एंड हर फैंस आर इन्वॉल्वड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया, व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उससे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स, उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन, एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल, कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन, क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज, एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ, आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका व्हिच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट, दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. Jeannie की आवाज़ होने की composition, गाने का नाम है Fika. ये गाने सुनते ही लगता है that Jeannie is not just another independent artist. She is one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, कोई ऐसे नए independent artist हैं जो आपने discover करे हैं, हमसे आगे share करो and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: डी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. आज हम इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक के बारे में जब बात करते हैं, पॉप स्टार्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाई 90s एंड 2000s का इंडी पॉप. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स. आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी उस कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाइज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

I will exactly tell you how this song makes me feel. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, that's what this song sounds like to me. बाबुल सुप्रियो की आवाज में, that was सोचता हूँ उसका दिल on a cassette classic this week. Ultimate love bender है ये गाना. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, हमारे साथ 90s and 2000s के ऐसे गाने शेयर करो which you think still hits home. My sound producer Ashkai और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके recommendations के, and you've helped us make this segment into such a success. So कोई भी recommendations हो बिंदास आके hit me up. Now back to the countdown, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौर का गाना Bangles पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके this week is on गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, a Coke Studio भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गाने का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपको ऑन द शो विच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanika. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दया द रैपर का छोरी अनन्या वेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then gana number 9 par Mittar Aur ka Shisha.
2: Tere aankhon ke piche laake sun do na chori ka har rang.
0: Guru Randhawa ka Vogue this week on gana number 8. Gana number 7 par is Aditya Rikhari Ravator Kutle Kha ka A Ajnabi from Coke Studio Bharat. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर. डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
4: मुन्ने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

Mitchie. It's hot.

0: वीकेंड आ गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिशियली सीन पे चली गई। वेलकम टू क्लब मिर्ची पीपल, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनतिका बैक अगेन विद दिस वीकेंड पार्टी डेस्टिनेशन। हे पार्टी स्क्वाड, वॉल्यूम को फुल करो, डीजे रिचर्ड के साथ मूड उठने वाला है सीधे 100 आसमां के ऊपर। लाइट्स ऑन, ड्रामा ऑन एंड वीकेंड का सीन शुरू करे, लेट्स गो।
1: When I met you in the

0: It's hot.
1: Mitchie, it's hot.
2: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वीकेंड का हार्ट ब्रेक भी ग्लैमरस लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में बीट बज रहा है, राइट? क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, तो चलो दिल पर एक साथ डांस फ्लोर पे आ जाए।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

सबका एक दोस्त है जो खुद को इंटरनेशनल परफॉर्मर समझता है। इन बिटवीन ब्रेक्स आवन और जावन के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रैक आपके लिए, गाने का नाम है जेरुसलेमा।

दूर का बादशाह कौन है? वही तो है असली बात, डीजे रिचर्ड है म्यूजिक का बादशाह। मुन्नी का नाम है मिर्ची और योंते का क्लब मिर्ची जा रही है दोस्तों। Oh, no, no, no, no.

एक दोस्त जरूर होता है जो हर गाने पे बोलता है, अरे ये तो मेरा सॉन्ग है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदिका। लेट्स गो सैयारा।

back to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi. Oi, Ontika, baby. No, not just baby. Let's say, hey, baby. कल क्या होगा वो मंडे सोचेंगे, आज से वाइब चेक होगा. और गाने का नाम है मस्त कलंदर. Let's go.

आंखें खुली हो या बंद, सपने सब डांस फ्लोर वाले ही आते हैं। क्लब मिर्ची में डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक पीपल। चलो फिर से करें मोहब्बतें।

क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। पार्टी का ग्राफ अब सीधा ऊपर जा रहा है और नेबर्स का बीपी भी। तो हमारे ताल से ताल मिलाइए और नाचना शुरू कीजिए।

ऑफ द डांस फ्लोर क्लब मिर्ची जा रही है वो डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयों देगा। जो लोग बोलते हैं मैं डांस नहीं करता, उन्हें बस उनका गाना बजने का इंतजार होता है। तो चलो सभी डांस फ्लोर पे आ जाओ क्योंकि असली हंगामा हो गया।

रहेगा वीकेंड पे सबके अंदर का हिडन परफॉर्मर, उसको बाहर लाएंगे और गाने पे नाचेंगे, क्योंकि अरे दीवानो सभी को बनना है डॉन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, दिस इज टू इनफिनिटी डांसिंग, लेट्स गो।

0: जिम नहीं है बॉस, तीन गाने बैक टू बैक पे डांस करना, जब गाना बजेगा लेजी लम्हे, लेजीनेस का तो जगह ही नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची एंड मिर्ची ऑन योर थिंग राइट नाउ, जॉइन अस ऑन द डांस फ्लोर।
1: दामी उन गर
2: उनके
1: उन गर
2: उनके
1: दामी उन
2: ओके।

0: वीकेंड ऑफिशियली एंट्री मार चुका है। जो लोग बोलते थे इस बार घर पे चिल करेंगे, वो भी आप डांस फ्लोर के जीपीएस पे ही मिलेंगे। लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, ब्लू आईज ऑन योर रेडियो सेट्स राइट नाउ।
1: तेरी प्रिंसिपल बिग बेबी शो शो की फैन है।

चाहिए जहाँ दो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, एक बीट, दूसरी एक्साइटमेंट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, वेलकम बैक। कयामत करेंगे फ्रॉम हाउसफुल 5, लेट्स गो।

एंड श्रेया घोषाल विद थोड़ी सी दारू. हाँ ठीक है, पर नॉट ड्राइविंग वाइल थोड़ी सी दारू इज इनसाइड ऑफ यू. ओके, हैव फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज तुम हो तो लव मिर्ची पे मस्ती है.

हमारी पीपल क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंते का। दिल टूटने का दर्द अलग होता है, डीजे बीट ड्रॉप मिस हो जाए उसका दर्द अलग, लेकिन दर्द जितना भी हो टल्ली नहीं होना चाहिए।

Hooper go wild, Hooper go wild.

विद क्लब मिर्ची एवरी वीकेंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल का आपके साथ, जहां आपको इस सोनी दे नखरे सोने लगते है कि नहीं।

किसी फिल्मी हंगामा के साथ डीजे रिचर्ड और मिर्ची ओयोंतिका बोल रहे हैं वीकेंड को ओवर एक्ट करो क्योंकि मंडे वैसे भी विलन बन के ही आएगा. बट बिफोर वी साइन ऑफ हियर्स अ किलर ट्रैक, दे कॉल इट मर्डर, मर्डर बाय मॉपी, रिक्रिएटेड फ्रॉम अ 90s रेगे ट्रैक बाय इना कमोजी. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका ऑफिशियली गेट्स ओवर फॉर द डे. टाटा.

टेस्टी सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी। सुन ले, मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा प्यार।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर

Mirchi, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर festival में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है and I think that is what really excites me और नया concept होता है you know दिवाली के time हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के time हम instruments के बारे में सोचते हैं computer की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं so many different ideas keep coming so जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है. Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलिडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलिडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू थिंकिंग ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं, पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हू लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड, तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाई योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार है या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट, ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके आध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्सगिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं। अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्सगिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफ कोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इज बिकम सो पावरफुल एंड मनी इज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग, शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
4: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू हितेश।
2: On Radio Mirchi,
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से, solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि nature में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर school में नहीं पढ़े हो तो at least festival के time पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मंगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे, सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके,
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे, जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस, ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
2: क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
3: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.
4: Gayatriyastu Param Naaste. Gayatri se bada koi mantra nahi hai. Rishiyon ne isiliye Gayatri ko mahamantra kaha hai. Jo koi is mantra ka शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल, कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है, बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉप 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप, गाना नंबर 20। देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है। This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai.
3: Number 20.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल, लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real-life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज़ जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊँगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में A.R. Rahman के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं, and सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर

still killing it with its sound, Dhurandhar. Aur honestly, Bollywood ka superhero track record bhi thoda Dhurandhar ki tarah hai. बॉलीवुड को लार्जर देन लाइफ चीजें हमेशा पसंद रही हैं, कभी बहुत सही, कभी बिल्कुल ऑफ टारगेट. बिकॉज इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हमने हर जॉनर क्रैक कर लिया है, रोमांस, एक्शन, फैमिली ड्रामा, क्राइम सागास. लेकिन सुपर हीरोज, वेल, सिर्फ दो नाम है जो बार बार कॉन्वर्सेशन में आते हैं, एक मिस्टर इंडिया एंड दूसरा क्रिश. और बाकी फ्लाइंग जाट, द्रोणा, भावेश जोशी, ब्रह्मास्त्र, देखो सब में एफर्ट तो थी लेकिन वो कन्विक्शन मिसिंग थी. इवन शाहरुख खान रा वन, जिसको वक्त ने उतना सही ट्रीटमेंट नहीं दिया था. और अब सडनली न्यूज आ रही है कि राज और डीके एक सुपर हीरो फिल्म डेवलप कर रहे हैं विद नन अदर देन सलमान खान. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खान एक रिटायर्ड एजिंग सुपर हीरो प्ले करेंगे. नाउ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. बिकॉज सच क्या है, सलमान भाई को कमबैक की जरूरत नहीं है यार, सलमान भाई को डायरेक्टर्स की जरूरत है. आप जरा नोटिस करो, राधे, किसी का भाई किसी की जान, इन फिल्म्स के डायरेक्टर आपको याद भी हैं? एंड गलवान की तो प्लीज बात भी ना करो, वो आएगी कि नहीं आएगी ना भाई को पता है ना किसी की जान को. इसलिए राज एंड डीके एक्साइटिंग लगते हैं, उनके पास वो टोन है, वो ह्यूमर है और फ्लॉड हीरोज को इंटरेस्टिंग बनाने का दिमाग भी है. लेकिन हाँ, बॉलीवुड ने सुपर हीरो जॉनर में हमें ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, इसलिए एक्साइटमेंट तो है पर एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल्ड है. नेक्स्ट अप इस गाना नंबर 15, रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो. फिल्म है तो 2026 की, पर पता नहीं क्यों लगता है इट्स स्टक इन 2006. नंबर 15.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 14

0: तेरा हो जाऊं, अ टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन। एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कंप्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स, ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर बहुत, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर टुडे।
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है, व्हाट इफ द ऑडियंस स्टॉप्स चूजिंग मी, व्हाट इफ दे स्टॉप लविंग मी। शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, बिकॉज फॉर वन मोमेंट वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सर्वाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 12

जाइए सजना। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे नहीं लगते, वो एक पूरा वक्त याद दिला देते हैं, एक फेज, एक इंसान, एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हाय, इट्स मी सुरेन। एंड हर डेकेड का एक साउंड होता है, और कभी कभी कोई एल्बम उस पूरे दौर की इमोशनल मेमोरी बन जाती है। 90s में देयर वाज अ रोजा, अ दिल से, अ दिल वाले दरनिया ले जाएंगे, अ ताल, अ हम आपके हैं कौन। एंड देन द लास्ट डेकेड 2010s, उसमें एक रॉकस्टार थी, ये जवानी है दीवानी थी, एंड ऑब्वियसली आशिकी 2। और ऑनेस्टली स्ट्रीमिंग ईरा में हिट सॉन्ग्स तो बहुत आए हैं, लेकिन कंप्लीट एल्बम्स जहां हर गाना लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाए, वो थोड़ा रेयर हो गया है। इसलिए धुरंधर इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉलीवुड को फिर से एक फुल एल्बम मोमेंट मिला है। लेकिन जब भी डिफाइनिंग रोमांटिक एल्बम्स की बात होगी, आशिकी 2 अलग खड़ी होगी। तुम ही हो वॉज ऑल अबाउट लॉन्गिंग। लेकिन एक और गाना था इस एल्बम में जो और डेंजरस था इमोशनली, बिकॉज इट वॉज नॉट हार्ट ब्रेक, इट वॉज कन्फ्यूजन। वो फीलिंग जब दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, पर आप खुद से अभी भी सवाल पूछ रहे होते हो। एंड मे बी दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टिल हिट्स सो हार्ड। वैसे नंबर 11 पे इस हफ्ते है रामजी आके भला करेंगे फ्रॉम भूत बंगला, दैट कंटिन्यूज इट्स क्लाइम। लेकिन राइट नाउ माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम आशिकी 2, जिसे गाया है अरिजीत और पलक मुछाल ने। दिस इज चाहूं मैं आना।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

0: See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए.
1: And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्याह करवा दो जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 9.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number

मैं और टू नंबर 8 और इस हफ्ते मैं सुरेंद्र सुंदरम और तुम और पूरा इंटरनेट रेड कार्पेट्स पे था। पहले द मेट गाला और अब द कैन फिल्म फेस्टिवल। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टेयरकेस की मालकिन जैसे हमेशा से रही हैं। There's Alia Bhatt, Aditi Rao Haidri, Jacqueline Fernandez and of course influencers जो फुल अटेंडेंस में होंगे, नो एब्सेंटीज। कैन जो कभी वर्ल्ड सिनेमा का सबसे बड़ा स्टेज हुआ करता था, अब विजिबिलिटी का ओलंपिक्स बन गया है। कौन ट्रेंड हुआ, कौन मीम बना, कौन रील्स पे छा गया। और ये भी सच है, कई लोग वहाँ फिल्म प्रमोट करने नहीं जाते, खुद को प्रमोट करने जाते हैं। देखो मैं जज नहीं कर रहा, 2026 में अटेंशन भी एक करेंसी है, और जिस दुनिया में 15 सेकंड की रील किसी को ओवरनाइट सेंसेशन बना सकती है,

0: वहां रेड कार्पेट भी कंटेंट बन जाता है। बस इतना कहना था, स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के बाद सर्टिफिकेट मिलता था, यहाँ ब्रांड डील्स मिलते हैं। वो बीच में जो आपने सैयारा सुना, जस्ट टू रिमाइंड यू, दैट वाज गाना नंबर 7। एंड जो लोग एक्चुअली कुछ फील करते हैं, एक्चुअली कुछ क्रिएट करते हैं, वो यहाँ है इस काउंटडाउन पे हर हफ्ते। नंबर 6 पर है विशाल मिश्रा एंड उनकी दीवानियत।
1: नंबर 6।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

वाओ, और ऑनेस्टली डेविड धवन का नाम आते ही एक पूरा 90s यूनिवर्स एक्टिवेट हो जाता है। आई एम सरीन एंड 90s की बात हो रही है तो उसी दौर में एक कंपोजर थे जो बॉलीवुड के रूल बुक पे चल ही नहीं रहे थे, बेजू शाह। एंड यू नो व्हाट, 90s का बॉलीवुड मेलोडी पे चल रहा था।

विजू शाह आ गए। सडनली म्यूजिक सिर्फ रोमांटिक नहीं रहा, स्टाइलाइज्ड हो गया, ड्रामेटिक हो गया, थोड़ा डेंजरस हो गया। एंड देन 1997 में भी सीन थोड़ा सिमिलर था।

0: रूम की लाइटिंग ही चेंज हो गई। दैट वॉज द विजू शाह इफेक्ट। उस वक्त उनका म्यूजिक लाउड लगता था, आज विंटेज कूल लगता है। और शायद इसलिए ओटीटी शोज लाइक बैट्स ऑफ बॉलीवुड, फिल्म्स लाइक धुरंधर, क्रिएटर्स सब फिर से उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विजू शाह गाने नहीं बना रहे थे, एटमोस्फियर बना रहे थे, माहौल बना रहे थे। एंड सच ये है मिलॉर्ड, बॉलीवुड फाइनली उनके साउंड के साथ कैच अप कर रहा है। What I'm going to play you next is one of the coolest title track of the 90s. It still sounds relevant even in 2026. This is Gupt. This is by Viju Shah.
1: Top 20 Rewind.

Tu Hi Dasda has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much, much bigger. It's me, Suren, aur aaj main aapko ek kitab ke bare mein kuch batana chahta hoon. Baat hai 2010 ki, Amish Tripathi aur unki likhi hui kitab, The Immortals of Melhua, Shiva Trilogy, uska pehla hissa. Aur jab maine ye kitab pehli baar uthai, to main bahut, bahut andar chala gaya. Aur sach keh raha hoon, bahar hi nahi nikal paya. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं। और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए। सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग। और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया, राइट्स वापस आ गए हैं। मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना, तो दुनिया आपको माफ नहीं करती। एंड अब खबर है, एंड इट्स नॉट कंफर्म येट, कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं, क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है। लेकिन ये सवाल ही गलत है यार। असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी। शिवा ट्रिलॉजी, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके। अभी तक वो बंदा आया नहीं था, लेकिन शायद अब आ चुका है। इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद। वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो। नंबर 1, आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता। नंबर 1।

0: शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। इसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. Yeah. You already know what it is.

0: सारा मेरा उप्स।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिका सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्सेशन करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। @RJ कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 8।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s and 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया, तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 ईयर्स, कॉन्टेंट डिस्कवरी का सबसे

बड़ा इंजन बनता जा रहा है एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कॉन्टेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस्त जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं वन ऑफ सच आर्टिस्ट विच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लेट नाइट अपलोड्स बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती है एंड हर फैंस आर इन्वॉल्व्ड इन इट उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया व्हिच इज अबाउट लॉस ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो शेयर योर स्टोरीज विद मी एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के ड्रम्स बजा के सुपर स्टार की तरह नहीं होता है वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है उनके इंटरव्यूज में उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है दैट शी वांट्स हर म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापलूज़ा अर्ली दिस ईयर नाम याद रखो नाम है जीनी रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका विच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो जीनी एट हर बेस्ट दिस इज फीका फीका प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय

0: Man oh man, word by word, it feels that she is really feeling her song. Jeannie ki awaaz unki composition, gaane ka naam hai Fika. Ye gaane sunte hi lagta hai that Jeannie is not just another independent artist. She's one of those artists of this generation that wants to grow with the new audience. At RJ Kanik on Instagram par aao, koi aise naye independent artist hain jo aapne discover kare hain, humse aage share karo and we might feature them and their songs next week. Now back to the countdown, agle wale gaane की बारी. दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Rana, Indie Top 10, Kanika ke saath, on Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.
0: Gana Indie Top 10, Kanika ke saath. On Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Gana Indie Top 10 only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram पर जाएं, मेरा handle is @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके hit me up. I truly believe that गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. आज हम independent pop music के बारे में जब बात करते हैं, pop stars के बारे में बात करते हैं, all of them have been influenced and inspired by 90s and 2000s का indie pop. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स. आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए, और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी उस कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना, ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. And I swear I'm not even lying. आज भी इस गाने को सुन के मेरे को butterflies आती हैं. Something in the voice of Babul Supriyo. एक warmth है, एक familiarity है. ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना है ये गाना. हमने radio sets की volume बढ़ा लीजिए. I'm going to ride on the Delulu Express Babul Supriyo की आवाज में. This is सोचता हूँ उसका दिल on our cassette classic this week. You're listening to Gana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. Enjoy.

आई विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ दिस सॉन्ग मेक्स मी फील. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग साउंड्स लाइक टू मी. बाबुल सुप्रियो की आवाज में दैट वाज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. अल्टीमेट लव बेंडर है ये गाना. एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, हमारे साथ 90s एंड 2000s के ऐसे गाने शेयर करो विच यू थिंक स्टिल हिट्स होम. माई साउंड प्रोड्यूसर अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौड़ का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाने का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपको ऑन द शो व्हिच इज कॉल्ड गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, जाओ मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल इज @RJKanika. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप. मिका सिंह दया द रैपर का छोरी अनैन अवेला डेब्यू ऑन गाना नंबर 10. Then गाना नंबर 9 पर मिट्टर और का शीशा.
2: तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. गाना नंबर 7 पर इस आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर.
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना.
0: डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
4: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
5: मुन्ने साम साम रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 1.

0: Hot. Mirchi. It's hot.
1: Dil wali gal kar le, pyar mere naal kar le.

Mitchie. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Entertainment बहुत हो रहा है आजकल. कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है. लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं. पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है. बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिदम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं. और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची डॉट 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम. लेट्स बिगिन. फर्स्ट अप, गाना नंबर 20. देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है. This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai. Number 2.

एतबार कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में A.R. रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज मस्कारा, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70

still killing it with its sound, Dhurandhar. Or honestly, Bollywood ka superhero track record bhi thoda Dhurandhar ki tarah hai. बॉलीवुड को लार्जर देन लाइफ चीजें हमेशा पसंद रही हैं, कभी बहुत सही, कभी बिल्कुल ऑफ टारगेट. बिकॉज इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, हमने हर जॉनर क्रैक कर लिया है, रोमांस, एक्शन, फैमिली ड्रामा, क्राइम सागास. लेकिन सुपर हीरोज, वेल, सिर्फ दो नाम है जो बार बार कॉन्वर्सेशन में आते हैं, एक मिस्टर इंडिया एंड दूसरा क्रिश. और बाकी फ्लाइंग जाट, द्रोणा, भावेश जोशी, ब्रह्मास्त्र, देखो सब में एफर्ट तो थी लेकिन वो कन्विक्शन मिसिंग थी. इवन शाहरुख खान रा वन, जिसको वक्त ने उतना सही ट्रीटमेंट नहीं दिया था. और अब सडनली न्यूज आ रही है कि राज और डीके एक सुपर हीरो फिल्म डेवलप कर रहे हैं विद नन अदर देन सलमान खान. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान खान एक रिटायर्ड एजिंग सुपर हीरो प्ले करेंगे. नाउ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. बिकॉज सच क्या है, सलमान भाई को कमबैक की जरूरत नहीं है यार, सलमान भाई को डायरेक्टर्स की जरूरत है. आप जरा नोटिस करो, राधे, किसी का भाई किसी की जान, इन फिल्म्स के डायरेक्टर आपको याद भी हैं? एंड गलवान की तो प्लीज बात भी ना करो, वो आएगी कि नहीं आएगी ना भाई को पता है ना किसी की जान को. इसलिए राज एंड डीके एक्साइटिंग लगते हैं, उनके पास वो टोन है, वो ह्यूमर है और फ्लॉड हीरोज को इंटरेस्टिंग बनाने का दिमाग भी है. लेकिन हाँ, बॉलीवुड ने सुपर हीरो जॉनर में हमें ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, इसलिए एक्साइटमेंट तो है पर एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल्ड है. नेक्स्ट अप इस गाना नंबर 15, रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो. फिल्म है तो 2026 की, पर पता नहीं क्यों लगता है इट्स स्टक इन 2006. नंबर 15.

0: तेरा हो जाऊं, अ टिपिकली सचिन जिगर सॉन्ग विद जुनीता गांधी एंड स्टेबिन बेन। एंड अरिजीत के रिटायरमेंट के बाद थैंक गॉड न्यू वॉइसेस आर इमर्जिंग, वरना हर हीरो की एक ही आवाज हुआ करती थी। वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, नाउ दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कम्प्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर वॉज ऑन। इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है। What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, because for one moment वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सरवाइव करना चाहते हैं। और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल। दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।
2: नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 12

जाइए सजना। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छे नहीं लगते, वो एक पूरा वक्त याद दिला देते हैं, एक फेज, एक इंसान, एक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हाय, इट्स मी सुरेन। एंड हर डेकेड का एक साउंड होता है, और कभी कभी कोई एल्बम उस पूरे दौर की इमोशनल मेमोरी बन जाती है। 90s में देयर वाज अ रोजा, अ दिल से, अ दिल वाले दरनिया ले जाएंगे, अ ताल, अ हम आपके हैं कौन। एंड देन द लास्ट डेकेड 2010s, उसमें एक रॉक स्टार थी, ये जवानी है दीवानी थी, एंड ऑब्वियसली आशिकी 2। और ऑनेस्टली स्ट्रीमिंग ईरा में हिट सॉन्ग्स तो बहुत आए हैं, लेकिन कंप्लीट एल्बम्स जहां हर गाना लोगों की लाइफ का पार्ट बन जाए, वो थोड़ा रेयर हो गया है। इसलिए धुरंधर इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉलीवुड को फिर से एक फुल एल्बम मोमेंट मिला है। लेकिन जब भी डिफाइनिंग रोमांटिक एल्बम्स की बात होगी, आशिकी 2 अलग खड़ी होगी। तुम ही हो वॉज ऑल अबाउट लॉन्गिंग, लेकिन एक और गाना था इस एल्बम में जो और डेंजरस था इमोशनली, बिकॉज इट वॉज नॉट हार्ट ब्रेक, इट वॉज कन्फ्यूजन। वो फीलिंग जब दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, पर आप खुद से अभी भी सवाल पूछ रहे होते हो, एंड मे बी दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टिल हिट्स सो हार्ड। वैसे नंबर 11 पे इस हफ्ते है रामजिया के भला करेंगे फ्रॉम भूत बंगला, दैट कंटिन्यूज इट्स क्लाइम। लेकिन राइट नाउ माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम आशिकी 2, जिसे गाया है अरिजीत और पलक मुछाल ने। दिस इज चाहूं मैं आना।

Mirchi. It's hot.